0: विगत 39 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लाजिमपाट काठमाडौँ।
1: शुभ दिन प्रायोजक
2: ग्लोबल आईएमई बैंक सबैका लागि बैंक।
3: OSR Digital, entertaining the nation.

0: महिना हो भदौको, अनि साथ इमेज एफएम 97.9 को।
1: जीवन शैली मात्र इमेज एफएम 97.9 मा।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें? हैं? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।